0: Good evening, hello and welcome. You're with the news today, your primetime destination news, newsmakers, talking points. It's Raksha Bandhan. Happy Raksha Bandhan to each and every one of you. Let's tell you what's our big talking point this Friday night. Nepal is on high alert again after fears of another glacier burst could happen. Top Nepal journalist Kanak Mani Dixit is joining me on what this climate emergency could do and why he believes India, Nepal, China need to come together. Also, the families of missing Indians are appealing for help. All that and more, but first, as always, let's kick it off. Let's turn to our top story, and it remains that devastating tragedy that's taken place in Nepal over flash floods. More than 540 people are now confirmed dead. At least 1,500, many of them Indian citizens, are still missing. And worse still, there's been a new glacial lake warning that's triggered panic, halted rescue operations briefly, and once again put the authorities on high alert. India Today has been tracking this rapidly evolving situation on the ground in Nepal. Our correspondent Ashutosh brings you tonight's top story from Nepal.
1: One catastrophe, rescue teams racing against time, then a brief halt after a fresh warning. Another threat is beginning to unfold in flood-ravaged Nepal. A day after China warned that another glacial lake outburst could be imminent, India Today has been tracking the developments from ground zero, bringing you every detail of these unfolding warnings.
2: Nepal is now on a risk of another severe calamity after China alerts Nepal for another glacier lake formation in the confluence. Major two rivers where till 27th of morning, nearly 2 million cubic water has been collected. And another 3 days, it is likely to reach up to 5 million cubic.
1: People living in vulnerable areas have been told to evacuate. Rescue teams had been asked to stand down as authorities closely monitor the rapidly rising water levels. The administration is on high alert. Here is the moment where the rising waters started creating panic among the locals.
3: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है लोग डरे हुए हैं इन्हें यहां से हटाया जा रहा है दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहां पर मौजूद हैं और हर किसी को यहां से जाने के लिए कहा जा रहा है जैसे ही चेतावनी दी गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा कि बाढ़ आ सकती है ये देखिए लोगों को वहां से निकाला जा रहा है ये तमाम सारे लोग अब यहां से नीचे के इलाकों से आगे की ओर जाना शुरू कर चुके हैं और चीन की ओर से भी चेतावनी दी गई थी कि जो लगभग अब तक 20 लाख क्यूबिक मीटर का पानी जमा हो चुका है और यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भी लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएं और ये तमाम लोगों को अब यहाँ से आगे ये नुआकोटी का वो धुंडे इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही की हमें मंजर देखने को मिला था आखिरी वो शहर जो बर्बाद हुआ और उसके बाद अब लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाए ये पुलिस है और लगातार लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ से निकलिए आगे की ओर जाइए अब तमाम सारे जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है कि खतरा एक बार फिर बढ़ सकता है ऊपर से पानी आने की गुंजाइश फिर से है.
1: But behind this latest threat lies a deeper and more disturbing reality, the extreme fragility of the Himalayan ecosystem. The region is increasingly exposed to a dangerous combination of unstable terrain, glacial activity, and seismic forces, creating the conditions for sudden and devastating disasters.

0: मोहम्मद शोएब
1: जी सर, हमारा बॉटल हम भरा करो।
2: इनको नहीं जाना दुबई, यहीं रहना है, रोज रोज जलील होना है।
3: एक बार हम सिपाही बन गए, साला किसी के बाप ने हिम्मत नहीं होगी हमको घर आने की।
4: सिर्फ हम चाहे जितने विकेट उखाड़, एक सरकारी फार्म की कैटेगरी वाले डिब्बे भर की औकात है हमारी, और बस वही तक सीमित है, वही हमारी पहचान।
3: पहचान वो नहीं है बे जो हमें पकड़ाई गई, पहचान तो वो है जो हम खुद बनाते हैं।
5: Meanwhile, he has Jugadu, an action comedy in the pipeline.
6: नाम क्या उसका?
7: अभिराज सिंह।
5: He will also reprise his lead role in the upcoming second season of Netflix, The Royals.
6: क्या तुम्हारी सब कुछ मजाक है? Anything that you value?
8: हम जानते हैं तुम्हारे और उस लड़की के बारे में।
5: Entertainment Bureau, India Today.
8: वो क्या होता है?
9: Oh, Paddy.

0: Hair loss is perhaps one of the major reasons why people are stressed today. It is perhaps one of the reasons why people are also anxious and depressed in certain cases.
1: Hair loss मतलब उसमें hair fall भी हो सकता है और hair thinning भी हो सकती है. Most cases में जो hair fall होगा वो पूरी तरीके से recoverable होता है. That hair thinning part जो होता है, after some time if you don't get it treated, then it results into a permanent hair loss. आपने देखा होगा लड़कों के बाल चले जाते हैं फ्रंट से, एक यू शेप्ड पैटर्न बन जाता है,
0: मेल पैटर्न बाल्डिंग.
1: एग्जैक्टली, लड़कियां होती हैं जिनकी जो सेंट्रल पार्टिंग होती है इट गेट्स वाइडेंड अप और थिनिंग ऑफ द पोनी टेल, दैट इज द मोर वरिंग साइन.
0: कोई ऐसा टेल टेल साइन है हम मुझे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए?
1: तो जब आप नहाएंगे, जब आप कोम करेंगे, जब आप चंपी करेंगे ऑयल से, यू विल सी हेयर इन योर हैंड.
0: Somebody comes to you with male pattern balding, what is your recommendation to them?
1: Two USFDA approved drugs for pattern baldness is the most essential treatment.
0: But there are some side effects also. The thing with minoxidil that I know is that as long as you're applying it, your hair will go through this hair fall phase, but then they will come back really nicely. But the minute you stop...
1: It's very interesting that in 1970s, when we discovered minoxidil, it was actually used for blood pressure. Doctors started noticing that the hair is increasing.
0: Now, the internet is divided over whether oiling is good for you or whether oiling is bad for you.
1: So, हमारी साइंस में तो ऑयल का कोई रोल है नहीं. तो आपका खुद ऑयल आता है. आप तीन चार दिन नहीं नहाओ कैसे हो जाता है? ऑयली हो जाता है.
0: Yeah, okay? Yeah. मेथी मिक्स कर दो, रोजमेरी मिक्स कर दो, हिबिस्कस मिक्स कर दो, ये सारी चीजें डालनी चाहिए. और
1: रोजमेरी ऑयल की आपने बात की, तो एक स्टडी है जो कि रोजमेरी ऑयल को सपोर्ट देती है. उसके पीछे रोजमेरी ऑयल की पूरी इतनी बड़ी
0: इंडस्ट्री
1: जो है वो स्टार्ट हो गई है. वैसे भी जो लोग हमारे पास आते हैं वो ऑलरेडी ये सब ट्राई कर चुके होते हैं.
0: दिस इज भूमित, हु सेज दैट शैम्पूइंग योर हेयर फ्रीक्वेंटली कॉज हेयर फॉल. इफ यू आर रेकमेंडिंग अ शैम्पू टू समवन, what do you look for in the ingredient list?
1: People make a lot of mistake in that. People just see the sulfate free ad and they will buy the sulfate free shampoo and then they will come to me for dandruff. And that is why my dandruff practice is increasing day by day, because everybody is selling sulfate free shampoos.
0: Everybody I know these days has a hair color on. What is the thing that should not be in your hair color?
1: Definitely, this is a very important question, I would say, in especially in Indian context, because hame apna color hair black hi chalta hai. हम लोग वाइट हेयर के साथ नहीं रह सकते. अभी जो रेगुलेशंस है, दैट इज बैंड अमोनिया कंप्लीटली, बट देयर इज अनदर मॉलिक्यूल इन द कलर्स, दैट इज.
0: हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर वर्सेस इंटरनेट. आई एम सोनल मेहरोत्रा कपूर एंड वेलकम टू आवर न्यू स्टूडियो. एंड यस, वी लिसन टू ऑल योर कमेंट्स एंड ऑल योर फीडबैक एंड यू गाइस सेड व्हाट इज दिस रेड बैकग्राउंड, तो हमने वो चेंज कर दिया. हम आपके लिए एक नया स्टूडियो लेकर आए हैं और एक बहुत ही बेहतरीन गेस्ट के साथ, एंड ऑन अ टॉपिक विच इज अगेन ऑन पॉपुलर डिमांड, एवरीथिंग टू डू विद योर क्राउनिंग ग्लोरी. आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर. से हेलो टू डॉक्टर अंकुर सरीन. हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
0: वेरी वेल. सो व्हेन इट कम्स टू हेयर, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग पॉडकास्ट, बट लेट मी स्टार्ट बाय आस्किंग यू दिस. Hair loss is perhaps one of the major reasons why people are stressed today. It is perhaps one of the reasons why people are also anxious and depressed in certain cases.

0: It is a very serious problem. It has repercussions all over. And hair loss can happen because of various reasons. But I want you to address permanent hair loss as one. We understand that if you lose too much weight dramatically, if you're on GLP-1, postpartum, season change, in sab mein, aapke seasonal hair fall hota hai, but that all that hair actually comes back.
1: Right.
0: But permanent hair fall aapko ho raha hai. Pehle mujhe pata kaise chalega ki mujhe ab jaake ek dermat se, trichologist se milna padega. How to tell?
1: Ye aapne bahut achhi term use ki, hair loss. It's actually not hair fall, kyunki kuch log hair fall bolte hai. So, hair loss matlab usme hair fall bhi ho sakta hai aur hair thinning bhi ho sakti hai. मोस्ट केसेस में जो हेयर फॉल होगा उसको हम साइंटिफिकली टेलोजन एफ्लुवियम बोलते हैं. वो पूरी तरीके से रिकवरेबल होता है. द अदर वन इज द हेयर थिनिंग पार्ट. दैट हेयर थिनिंग पार्ट जो होता है आफ्टर सम टाइम यू डोंट गेट इट ट्रीटेड देन इट रिजल्ट्स इनटू अ परमानेंट हेयर लॉस.
0: ओके.
1: एंड देन देयर आर सम अदर मेडिकल कंडीशंस जो कि इतनी कॉमन नहीं होती बट दे कैन ऑल्सो कॉज हेयर लॉस, परमानेंट हेयर लॉस. इनको हम स्कारिंग एलोपेशिया बोलते हैं, यानी कि स्कारिंग हेयर लॉस. तो जो मोस्ट कॉमन रहता है वो हेयर थिनिंग रहता है एंड द हेयर लॉस ड्यू टू द हेयर थिनिंग, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी बोलते हैं. आपने देखा होगा लड़कों के बाल चले जाते हैं फ्रंट से, एक यू शेप्ड पैटर्न बन जाता है,
0: मेल
1: पैटर्न बॉल्डनेस एग्जैक्टली. या फिर लड़कियां होती हैं जिनकी जो सेंट्रल पार्टिंग होती है इट गेट्स वाइडेंड अप. Or girls will say a little bit, reduction of hair from this part or thinning of the ponytail. That is the more worrying sign. Agar hair fall ho raha hai, wo itna worrying nahi hai because that is easily recoverable. But when the thinning starts, then you know that you're moving towards a permanent hair loss.
0: Okay, but farak kaise samajh mein aayega isme? And क्या दोनों केसेस में बाल रूट से जा रहा है और इज इट अ केस ऑफ हेयर डैमेज ऑल्सो विच इज वाई थिनिंग इज हैपनिंग.
1: सो हेयर थिनिंग इज मोस्टली ड्यू टू अ हार्मोन इन यू एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड DHT, dihydrotestosterone, विच इज मोर इन मेन बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम टेस्टोस्टेरॉन विच इज इन योर ब्लड एंड वेन इट रीचेज द हेयर फॉलिकल there it meets an enzyme called 5-alpha reductase that converts it into dihydrotestosterone, and this dihydrotestosterone is responsible to shorten the growth phase of the hair, which is called the anagen phase. Science में से anagen phase बोलते हैं. जब हमारा growth phase छोटा हो जाएगा तो बाल पतला हो जाएगा. तो जैसे आप सोते हो उठते हो वैसे आपका hair follicle भी सोता है उठता है. तो जब उठने का टाइम है उसका तो उसको एनर्जन फेज बोलते हैं. एनर्जन मतलब ग्रोथ फेज, मतलब वो एक्टिव है, वो ग्रो कर रहा है, मेटाबॉलिकली थिक हो रहा है. दैट इज व्हेन वी वांट, दैट इज व्हाट वी वांट ऑल अवर हेयर टू बी इन द एनर्जन फेज. बट एक नेचुरल चीज है तो नेचुरल चीज को रेस्ट तो चाहिए होगा, थक जाएगा तो हेयर फॉलिकल को रेस्ट चाहिए. तब जो जब उसकी रात हो जाती है तो उसे बोलते हैं टेलोजन फेज. तो टेलोजन फेज इज द रेस्टिंग फेज और उसके बीच में एक फेज आता है जिसको कैटेजन फेज बोलते हैं. वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटा होता है वो. टेलोजन फेज जो होता है वो रेस्टिंग फेज होता है और इसमें क्या होता है कि बाल बस रेस्टिंगली आपके स्कैल्प पे पड़े होते हैं. इजीली आप उसको खींचोगे तो वो बाहर आ जाएंगे. एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 90% ऑफ द हेयर आर इन द ग्रोथ फेज एंड 10% आर इन द रेस्टिंग फेज. व्हेन दिस रेशियो चेंजेस 60-40 हो गया, 50-50 हो गया, सो रेस्टिंग फेज के बाल बढ़ जाएंगे. तो जब आप नहाएंगे, जब आप कोम करेंगे, जब आप चंपी करेंगे ऑयल से, यू विल सी हेयर इन योर हैंड. सो देन वी से दैट द पेशेंट इज हैविंग टेरोजन एफ्लुवियम, या उसे हेयर फॉल हो रहा है. नाउ दिस इज इजियर टू रिकवर. बट द अदर वन दैट आई सेड वेयर देयर इज थिनिंग ऑफ द हेयर शाफ्ट, जिसमें आपका हेयर फॉलिकल का साइज धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ परमानेंट हेयर लॉस.
0: कोई ऐसा टेल टेल साइन है कि अब हेयर थिनिंग के फेज में मैं आ गई हूं, अब मुझे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए?
1: फॉर गर्ल्स अ लॉट ऑफ देम नोटिस वाइडनिंग ऑफ द पार्टिश. उससे भी पहले आप पता कर सकते हो बाय सीइंग हाउ योर पेरेंट्स आर, बिकॉज जेनेटिक्स तो वहीं से आना है. तो अगर आपके पेरेंट्स को, फादर को फ्रंटल बॉल्डिंग है, क्राउन एरिया बॉल्डिंग है, आपकी मदर की सेंट्रल पार्टिंग वाइडेंड है, so you know that you are at a higher risk than the general population for this kind of hair thinning. So you can प्रीएम्प्टिवली टेक सम स्टेप्स. घबराने की भी जरूरत नहीं है, लोग बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं ऑलरेडी, हेयर को लेके बहुत सेंसिटिव रहते हैं लोग. बट दिस इज वन वे दैट यू कैन जज. द सेकेंड इज लाइक आई सेड, पोनीटेल थिनिंग. पेशेंट विल कम एंड से डॉक पोनीटेल अब उतनी रही नहीं, हेयर की लेंथ अब उतनी नहीं ग्रो हो रही जितनी पहले हो रही थी, बिकॉज ऑफ द शॉर्टनिंग ऑफ द ग्रोथ फेज ऑफ द हेयर, जिसको एनेजिन फेज बोलते हैं, विच कैन बी फ्रॉम 2 years to 6 years. अब आपके बाल यहां तक है. अब किसी के हो सकता है आपका ग्रोथ फेज 4 years का हो, अगर किसी का 6 years का जो मैक्सिमम होता है यूजुअली, उनके मे बी नीज तक बाल आ जाएंगे, ठीक है. और जिसका 2 years होगा उसके इससे आगे भी बाल नहीं
0: तो
1: बढ़ेंगे.
0: क्या डिफाइन करेगा कि मेरे हेयर का?
1: दिस इज जेनेटिक्स.
0: This genetics, nutrition,
1: yeah. But see, genetics has the major role. You cannot change genetics by changing your nutrition and lifestyle, right? But good genetics and bad lifestyle can be still bad hair.
0: Yeah,
1: right?
0: Yeah.
1: So it's like that.
0: So when people say they are blessed with good hair, they actually mean that, right?
1: Definitely.
0: So ये जितनी Instagram पे viral videos बनते हैं कि मैंने ये concoction लगाया rosemary oil का and इससे मेरे बाल 6 inch to 12 inch हो गए हैं, all of that is not true. They probably already had good genes,
1: yes,
0: and they've just done the right thing by right. supporting that.
1: Right. Yeah. So there is genetics and there's epigenetics, right? So how the environment is playing a role in supporting or not supporting that genetics, definitely that is important. And rosemary oil की आपने बात की, तो एक study है जो कि rosemary oil को support देती है for the hair growth. और उसके पीछे रोजमेरी ऑयल की पूरी या रोजमेरी वाटर की पूरी इतनी बड़ी
0: इंडस्ट्री
1: जो है वो स्टार्ट हो गई है.
0: ओके, सो हमें ये एस्टैब्लिश हो गया कि लार्जली आपके बाल कैसे हैं, कब झड़ेंगे, किस पैटर्न में झड़ेंगे, ये आपकी जीन्स डिफाइन करते हैं. अ लॉट ऑफ इट इज नॉट इन योर हैंड.
1: यस,
0: अ गुड लाइफस्टाइल, गुड प्रोटीन इनटेक, गुड स्ट्रेस लेवल्स कैन रियली एम्पलीफाई इट और नॉट, बट वो रेंज वही रहेगी. तो अगर अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी हेयर थिनिंग शुरू हो गई है और मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, आप सबसे पहले क्या करवाएंगे? आप मुझे टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, आप मुझे ट्रीटमेंट्स बताएंगे, आप मुझे अपना डाइट ठीक करने को बोलेंगे, आप क्या करेंगे?
1: सो फर्स्ट थिंग इज द हिस्ट्री. तो आप मेरे पास आते हैं तो आई हैव टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, हाउ यू फील अबाउट इट, सिंस व्हेन इट इज हैपनिंग, दैट गिव्स अस अ गुड आइडिया. देन द सेकेंड थिंग इज आवर एग्जामिनेशन. सो वी हैव टू एग्जामिन द पेशेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, दैट हाउ द हेयर इज. वी कॉमनली डू अ हेयर पुल टेस्ट, मैं काफी पसंद करता हूँ उसे करना, जिसमें कि हम अराउंड अंदाजे से 60 हेयर स्ट्रैंड्स को लेते और बेस से ऊपर तक उसको ट्रैक्शन देते और देखते कितने बाल हमारे हाथ में आ गए. तो बहुत लोगों के उसी से पता लग जाता है कि हाँ हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि अगर 5 या 5 से ज्यादा बाल उसमें आपके हाथ में आते हैं, सो देन यू नो दैट
0: पेनफुल.
1: नो नो, इट्स नॉट दैट पेनफुल, या बट इट्स यू कैन से मे बी 3 or 4 out okay. of 10, yeah,
0: huh.
1: little bit.
0: So need... 60 आपने pull करे, उसमें से अगर 4 or 5 आ रहे हैं तो that's normal.
1: Yes, okay. yes. हाँ, अगर उससे 2-3 आ रहे हैं तो normal है, but अगर 2-3 से ज़्यादा आ रहे हैं, जो बहुत commonly आते हैं, so then it is not normal. And also we go by what the patient is saying. If the patient is saying that the hair fall is significantly increased than what it was before, then we like to proceed even if the hair pull test is negative, right? After that, we commonly, we can narrow down the diagnosis once we have taken the history and physical examination. The next step is to recommend some tests, some normal blood tests that can be done. And we can check the nutrition profile. We can also, these days I've also started to tell patients that put your diet on these, you know, calculators that are available on the internet.
0: Yeah.
1: Because that gives them an idea of how much protein they're having.
0: Protein! Because, protein is like everything now.
1: Right.
0: Even for your hair.
1: Right, absolutely. Or 1 gram per kg is, a lot of India is vegetarian and a lot of them are not having that much amount of protein, right? So that is very important. So we get an idea from this, like what is going on.
0: Kuch tests bata sakte hain aap, males and females,
1: tests, right?
0: Blood tests that they should get done if they want to understand the source of their hair loss.
1: So if you want to go to a dermatologist, so if you want to get a test beforehand done, you can do a CBC, you can do a vitamin D. CBC will tell you the hemoglobin levels and it will give you a picture
0: of...
1: Oh,
0: iron deficiency will also...
1: Iron deficiency will be caught there. It will give you the size of the red blood cells. So if the PCV is down, you know that it is iron deficiency. If the nucleus is of the red blood cells is bigger, then the doctor will know it is vitamin B12 deficiency. So a good idea one can make out from the CBC. Then we have the vitamin D. okay, which is again very low in a lot of patients, so we need to supplement that. Then vitamin B12, then there's TSH thyroid. अगर आपको वीकनेस फील होती है, आप जल्दी थक जाते हैं, तो आपको थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए. और फेरिटिन लेवल्स, दैट इज द आयरन स्टोर्स इन योर बॉडी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और कई बार नॉर्मल होते हैं, हम उसको चाहते हैं कि हम उसको थोड़ा अपर एंड पे रखें फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस. सीबीसी, वाइटामिन डी, B12, फेरिटिन एंड TSH, दीज आर द 5 टेस्ट दैट आर कॉमनली डन. इसके अलावा अगर फिर भी हेयरफॉल नहीं रुक रहा है, देन वी गो इन टू द डीपर टेस्टिंग विद ट्रेस एलिमेंट जैसे जिंक, सेलिनियम, मैंगनीज, क्रोमियम, जो कि हमें हमारी बॉडी को ट्रेस अमाउंट्स में चाहिए होते हैं. और कई बार ये भी डेफिशिएंट आ जाते हैं. मैग्नीशियम बहुत लोगों में डेफिशिएंट होता है, जिंक बहुत लोगों में डेफिशिएंट होता है, तो इनको भी हम सप्लीमेंट करते हैं और उससे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आने लग जाती है. देन देर आर सम एडवांस्ड टेस्ट जैसे कि स्कैल्प बायोप्सी. अगर हमें डाउट एज अ डॉक्टर, वी आर नॉट एबल टू डायग्नोज विद जस्ट दीज स्टेप्स, देन वी कैन सेंड अ स्मॉल पीस ऑफ द स्किन ऑफ द स्कैल्प टू a dermatopathologist, the one who looks under the microscope and tells us that this could be ABC, and then we proceed accordingly. So these are the most common tests that are done. Apart from that, for research purposes, we can check the diameter of the hair. Agar hair ka diameter kam ho raha hai, we take 10 hair, we see them under the microscope. Agar hame lag raha hai ki there's variation in the diameter of the hair, so that is a sign of the hair thinning, kyunki har hair ka diameter alag alag aa raha hai. So these are the tests that we can do.
0: Yeah. So for me, the takeaway from this is that if you're iron deficient, if you're B12 deficient, if you're vitamin D deficient, or if you're not taking the right amount of protein, you will have hair fall.
1: Definitely.
0: And a lot of the fix actually lies in what you're eating.
1: Yes.
0: Okay. And
1: yes,
0: what the fuel you're giving to your body. And that's one.
1: Exactly.
0: A lot of this hair fall that has now happened, if it is, say, genetically inclined, it will not regrow, right? So in order to grow that hair again, what are the kind of therapies which are out there in the market? Some very popular ones we see on Instagram as well, and there's a lot of misinformation. But I'm sure not like a right therapy needs the right patient. So how do you make that match? So say somebody comes to you with male pattern balding, what is your recommendation to them?
1: Yeah. So if somebody has male pattern balding, first thing first is they have to do something at their home every day to fight the effect of that DHT. Okay, so for them, DHT blockers is the most essential treatment. Okay, so DHT blockers are two types. One is finasteride and dutasteride. Then there are some injectable options available like bicalutamide, okay, which we can put in the scalp. Okay, that is mostly done for females. So finasteride and dutasteride patients can take at home. They will block the DHT and they have good effect. They are also US FDA approved for.
0: DHT is basically a kind of...
1: it's a hormone.
0: Yeah.
1: It's a hormone. It's a more potent form of testosterone that is responsible for shortening of the growth phase of the hair.
0: But there are some side effects also.
1: Yes. So finasteride and dutasteride, because they reduce the DHT. So theoretically, aapke body mein female hormones ka effect zyada badh sakta hai for a male. So you can get breast enlargement, okay? You can get loss of libido, that is reduced desire to have sex, okay? Now, the breast enlargement is very rare, super rare. Like in 5 years of my practice, I've had one, that is of my clinic practice, one patient of
0: breast enlargement.
1: Loss of libido, that is reduced desire to have sex, that is much more common. Also, I think it gets into patients' head, but the biggest meta-analysis, that is, agar studies, agar 50 studies hai, un sab ka jo ek meta-analysis karte, sari studies ko jod kar kya data nikla, usme ye pata chala hai ki 4% logo ko ye hota hai. To iske bhi chances kam hai kafi. But still, because people read it and you know, it is such a psychological thing, having the sexual drive, or maybe if they're having something else, they might blame it on the drug. So the overall percentage, I would say, in my practice would go up to 10%, 15%. Patients might say that, doc, I don't want to take it because I'm having sexual side effects.
0: Oh, I see. So, and about women?
1: So for women, the sexual side effects could be there. That they also might feel a reduced desire to have sex. But other side effects are not very concerning for women. If you have a history of breast cancer, a strong breast cancer in the family, like your first degree relative, then we avoid giving DHT blockers, or we can give it and, you know, we can ask the patient to be a bit, you know, get her breast examined yearly. Yeah.
0: Get your scans
1: something.
0: More regularly done.
1: Yeah.
0: So this doesn't sound like a good option.
1: See, all medications have some side effects. At least
0: is
1: all
0: there like no natural way to block DHT then?
1: I'm the wrong person to ask on natural treatments. But yeah, no. See, there is like pumpkin seeds, saw pomato, which have shown in studies that they reduce DHT. But the thing is, when the patient is...
0: But I'm sure, I mean, I'm hoping this is not that kind of a study jisse wo bolenge, 1 kilo khane se theek hoga, wo to koi nahi kha payega, right? Like, that's this proportion people don't...
1: Right. I'm not sure of exact what is the amount. But there are some supplements available, and when patients are not going, when patients say, I don't want to take all this, then we do put them on that. But I, as a doctor, I'm not very sure, and I tell this to the patient, ki I'm not, I'm giving it to you, but I'm not sure if it will work or not.
0: Yeah,
1: so,
0: yeah.
1: And most of the patients who come to me are at a stage where they need a proper treatment, like an FDA clear treatment, right?
0: Yeah.
1: So that is what we believe in.
0: Yeah. So are there other options? Because this is, I'm like taking it off. This is like too much of a risk. What is the next treatment
1: next
0: available?
1: Best.
0: I mean, we are in 2026. Yes. I'm sure there is
1: yes.
0: machinery available. I'm sure there are medicines available that can, you know.
1: Now coming back to, we'll go to minoxidil, but because we are talking about DHT blockers. So DHT blockers are now available in the injectable form as well. So, and they're also available with microneedling. So you do microneedling and you put the solution on the scalp and it penetrates more. When you do that, you're just giving the DHT blocker in a limited space on the scalp. So it does not go that much into the systemic circulation. Because when you eat a goli, it goes to your gut. It goes to your pair as much as it goes to your head. So it's all equal. But when you are giving a local shot, local injection. So most of the effect of the drug will be limited to that area.
0: Yeah. So you will numb the head and you will inject it.
1: Yes, like, we'll numb the, we'll put a numbing cream and we give shots of DHT blocker. They're called deutetrasteride and bicalutamide in cases, in female cases.
0: Okay. Yeah. Pretty popular. You have people.
1: It's not actually that popular. It's with only specialized dermatologists and specialized clinics that you'll get these services.
0: Okay.
1: It's not very popular. It's not still out there so much on the social media.
0: Oh.
1: Now it's out there.
0: No, that is good to know. Also, can I just use this time to say that if you go to any salon and they are promising anything to you, please don't. If you get any home treatment which is promising to do a laser for you or bring your hair back, please don't. Please always, always go to a certified doctor and let them only operate from you. We've had enough horror stories coming out from different parts of the country where a doctor has done something or a dermat has gone in to operate and, you know, all sort of stuff has happened. Yeah, so we've got to be very, very careful.
1: And these are Schedule X drugs, not even H, which is the minor form of prescription. X is like strongly regulated. India ke bahar to aapko ye drugs milte nahi hai. Bahut mushkil. Doctors bhi 5 baar soch kar likhte hai. Kyunki they have so much documentation they have to do.
0: Yes. But if you are taking it, applying it locally on your head, like injecting it there, in how much time do you see hair reversal?
1: Around 4 months onwards, you start to see. Because the telogen phase I told you, that is of 8 weeks. तो ये जो दवाइयां ये टेलोजन फेस पे काम नहीं करता है वो अपना ग्रोथ फेस छोड़ चुका है हेयर तो उसने तो शेड होना ही है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 8 हफ्ते बाद आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होगा इवन दो द मेडिकेशन वर्किंग ऑन द फर्स्ट डे सो दैट इज व्हाई वी टेल पेशेंट्स कि आप कभी भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं हेयर फॉल की 2 महीने आपको वेट करना है उसके बाद यू हैव टू जज द ट्रीटमेंट की वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है
0: राइट आई थिंक एंड दिस इज द फेज इन विच अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली फॉल ऑफ ट्रैक
1: Yes.
0: And because, you know, we all know about this one product which is on everybody's mind, minoxidil, right?
1: Yes.
0: Let's talk about minoxidil.
1: Yes.
0: So there is so much information, or should I say, there is so much misinformation about minoxidil. Because the thing with minoxidil that I know is that as long as you're applying it, your hair will go through this hair fall phase, but then they will come back really nicely. But the minute you stop.
1: Yes, it goes back.
0: Yeah. So. Is that true? Is that how it goes? And does that mean that people who are on minoxidil have to keep taking it all their life?
1: Okay. So let me tell you a little bit about minoxidil. Yeah. So it's very interesting that in 1970s, when we discovered minoxidil, it was actually used for blood pressure, right? So doctor used to give the medication to reduce the blood pressure. It is a potassium channel agonist. Okay, so it dilates the blood vessel by working on that potassium channel. So this is what we were using as a antihypertensive. Doctors started noticing that the hair is increasing. Okay. And later on, we discovered better drugs for hypertension, which we can use at a lower dose and with lesser side effects. So we stopped using minoxidil. And now minoxidil resurfaced in the last few years. And a lot of different oral minoxidil brands have come up in the market, right?
0: Does that mean that people who are hypertensive should be careful about taking this drug?

0: हमारे सीएलपी राजस्थान के मंदिर जाते हैं, बीजेपी के नेता शुद्धिकरण करते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने, और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं।
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।

0: Hello and welcome once again to the India Today biannual Mood of the Nation. That's right, the poll that's been going on for more than two decades, brought to you by C-Voter. And it is coming at a time when the country's politics is going through some kind of turbulence. It's been a turbulent year, particularly since when we did the last Mood of the Nation in January. You've had conflicts, agitations, and plenty more. What is then the mood of the nation? The India Today C-Voter poll is here with the most definitive mood tracker of what's the mood and what would happen if elections were held today. With me are all my colleagues, starting from the extreme left, Siddharth Zarabi, editor of Business Today, joined by Raj Chengappa, editorial director, India Today, also Preeti Chaudhary, Maria Shakil, Gaurav Sawant, all with you, and Yashwant Deshmukh, who, remember, is the one who's put this poll together for C-Voter. Also joining me is the Congress's Brijesh Kalappa. We also hope to be joined by our BJP guest shortly. Okay, now remember, one of the things that the Mood of the Nation does is what happens if elections are held today. That's if general elections are held in August of 2026, what would happen? Projected vote share, but before that, I want Yashwant to tell us when he's done the poll and what was the sample size. Yashwant, you want to go and kickstart by just giving us exactly when this poll was done and what's the sample size?
1: Absolutely, Rajdeep, and very quickly on to that, because now the viewers and audiences have known our tracker for more than 25 years, as you just mentioned, that there are two different parts of the poll. That one is the new questions, which Raj and the India Today editorial team fixes up every time before every edition of the Mood of the Nation, which are very much relevant for the issues that are hitting the ground as of today. And that is the tracking part, which does the routine questions every day, day after day after day. And so every 6 months, we compile that as well. So for the new questions, we have done almost 25,000 plus samples in the last 4 weeks, to be precise. And a big chunk of them we have done actually in the last 2 weeks, because that is where the crisis was hitting up. So a lot many new questions were drawn at that point of time to understand the change on the ground. And on the tracking part, there is almost like 90,000 samples that we have done in the last 6 months to track the things on the ground. So these two significantly large sample sizes out there, and we have analyzed both of the sets to understand the current traction on the ground and also the long-term trend points on the series.
0: Okay, so more than 1 lakh respondents spread across the states of the country, relatively representative, but of course with all the caveats that polls are injurious to health. Please keep that in mind, particularly in a country like India. Okay, projected vote share if elections were held today. As per the C-Voter poll for India Today, Mood of the Nation, NDA would end up with 45%. That's minus 2. But when you look at minus 2, remember, this is, of course, in comparison to where we have stood over recent polls. So that's 45% to the NDA. That's what they got, 47% in January of 2026, down to India Alliance, 39%, others 16%. So it's a 2% swing as of now. Projected seat share. NDA, if elections were held today, would get 326. Now that, remember, also includes the fact that the NDA has been boosted by recent parties breaking up and joining it. Now this is in contrast to 352, which the NDA was getting 6 months ago. So they are down 26. India Alliance is only marginally up, 185, up 3. 32 are others. So the largest chunk are coming to these parties, up 23. Projected vote share, party-wise, BJP 39%, down 2% compared to January 2026. Congress 21%, up 1. Others 40%, minus 1. And take a look at seat share. That's where the BJP is getting a significant drop of 26 seats compared to January, 261. Below the halfway mark, down 26. But the Congress is going to 106, that's up 26, again compared to 2026 January. but still well short of the majority, while the BJP is very close to the halfway mark. So the gap between the BJP and Congress remains significant. Others are as much as 176 at the moment. So that's the first big takeaway. If elections were held today, you would still have an NDA government. The Congress may have made small gains compared to 6 months ago, but clearly nowhere close to the BJP. Let's get in first reactions. Raj Chengappa, your cover apparently, which I just saw, is saying warning signals. But when I look at these numbers, the fact is 261 versus 106, 326 NDA versus India Alliance 185, the gap is still significant.
2: You know, Rajdeep, this poll has come at a very important point because we've had this Gen Z rage and uprising, and everybody is curious to know what would be the impact. For the NDA and the BJP, I think the comforting news is that the drop is not, getting them to rush to panic buttons. They have certainly dropped, and as you mentioned, dropped 26 seats by the BJP, which puts them into this uncomfortable position of having to depend on the NDA. That's theoretically speaking. And overall, the NDA gets 326, still well within their comfort zones. But I think the big message, and that's why we're saying the warning signals, is that there are various other questions that are there, whether you're looking at the economics.
0: We'll come to those.
2: Sure.
0: These are opening remarks. At the moment, you're saying
2: While there's no panic buttons, there's plenty to worry about. And that's why we're going with warning signals that they need to course correct on various fronts.
0: Maria Preeti, dive in. Warning signals, or do you believe that there is a comfort factor? With the BJP, you track the BJP. If they look at these numbers, will they be comforted?
3: Not really. Because, Rajdeep, let's not forget that this is coming after 4th of May. And 4th of May and weeks after that and 2 weeks before that was almost total electoral dominance of the BJP. BJP likes that kind of comfort when they have enough and more cushion around them. When they were entering the monsoon session of Parliament, it was almost certain that they will ensure the passage of the delimitation bill. With the number of this nature, of course, the BJP will say that their dominance remains, but because this is a party which believes in course correction, they believe that if there are certain warning signals, they should read those signals, and that is the reason why you are seeing the entire shift also in terms of messaging that is coming in from the party.
4: Rajdeep, two things if you look at it right now. So, of course, we are looking at these numbers from what our last Mood of the Nation numbers were, which was in January. And at that point of time, BJP alone was comfortably above the halfway mark. So here it's not above the halfway mark. And we'll have to, like Raj said, depend theoretically on its allies. But two things have happened. Since January, when our last Mood of the Nation took place, to now, there have been two elections which have taken place, where one, the BJP has won handsomely in West Bengal, and the other, where you've had, what sparked the entire Gen Z movement, I would think, was the state of Tamil Nadu with Vijay coming in. And then, subsequently, you've had this massive youth upsurge in various protests, not just the one which happened at Jantar Mantar. I'd like to know, through the course of what we're going to go ahead over the course of 2 hours, Rajdeep, which one weighs more? Where has the BJP gained? Where has it lost? Are the numbers that, is keeping it seemingly comfortable coming from states like West Bengal?
0: Right.
4: Has the Gen Z is the one which is pulling it down? I want to deep dive in that.
0: Gaurav, your first remarks.
5: 12 years in power. After 10 years, the Congress had come down to 44. The BJP is at 261, just 11 short of forming the government on its own. With its NDA allies, the BJP or the NDA comfortably forming the government despite massive global headwinds that the government is facing on multiple fronts. The economy is facing headwinds. There's war that's happening between Iran and the United States of America. And despite all these headwinds, the government, according to these numbers, is at 200, the BJP at 261 and the NDA at 326. Now, this is actually writing on the wall, Rajdeep, that the opposition and Gen Z, whatever they may have sought to do, did they actually succeed, or has the government still been able to hold fort?
0: Okay, there's a distinction, of course, we must draw between possibly Siddharth Zarabi, the government's ability to win elections and electability, and the issues. That's why the cover is warning signals. We'll deep dive into that in a moment. But your first reactions, because across the world, you expect after a certain stage, a government in power for more than a decade, Gaurav is right there, registering some decline. By and large, the BJP's lowest numbers, if I look at it, MOTN, over the last few years, was actually soon after 2024 Lok Sabha, where they came down to 244.
6: Yes.
0: Since then, they peaked at 287 in January of 2024. They've come down again. And here, too, they're being saved by the fact that they're doing well in states like West Bengal, which they were not doing well 6 months ago.
6: Rajdeep, you spoke about West Bengal, and I want to connect that with a very significant point that Preeti alluded to. Between then and now, let's take a look at the increase in the number of MLA seats that the BJP has got. Roughly 44% of all MLA assembly constituencies in India are now BJP ruled, and there has been a substantial accretion to that on account of West Bengal alone. Has the popular imagery and some issues dented the image? Of course. But add to the MLA seats increase in the same period that we are seeing an overall decline at the parliamentary level as per these projections, you also have to take into account and ask yourself the question, has the BJP organizational machinery been dented during this time? Rajdeep, the answer is unequivocally no. Has the BJP and its Panna Pramukh strategy of going to the last boot, to the last person, been weakened in any manner? No. And as a consequence of recent developments, have we seen in the organizational revamp of the BJP machinery closer coordination between RSS and the BJP? The answer again is yes. So I would say that in the real world, some of these projections would be tested in the other direction.
0: Okay.
2: Just a quick point that I wanted to make while Siddharth mentions the fact that the BJP has won so many states. And I think it's 22 out of 28 after West Bengal. The fact is they were coming in from a peak. And suddenly, if our results begin to show, they should have then reflected that they were getting much higher than what they got in the last polls. Because the sheer fact that they'd won West Bengal, they'd won Delhi earlier, Maharashtra, all these things after 2024. Yet those numbers are not adding up when it comes to the final Lok Sabha tally. And that, I think, is the cause for worry, because certainly this 1 month period or 2 month period, that May and June, when they should have been on top, suddenly they seem to have dropped. And that is why I'm saying there are serious issues that they need to look at.
0: Let me go to Sanju Verma and Brajesh Kalappa, who are also joining us, one of the BJP, one of the Congress. Sanju Verma, when I look at these numbers, it's only for the third time in the last 24 months the BJP is slipping below 272. Now, I know that you will probably see 261 as just short of a majority, and with your allies, you're well over 300. Should you worry when you start dropping 26 seats compared to our last poll? Because the one danger is that once you lose momentum, you can decline further. Do you worry about these numbers, or are you comforted by the fact that the opposition is still well behind?
7: You know, Rajdeep, I think the biggest advantage for the Modi government and the BJP in particular is the fact that BJP, due to its organizational strength, is able to convert vote share into winnable seats. You know, for instance, the MOTN poll says the NDA will have a vote share of 45% and BJP standalone 39%. Now, if you're giving the BJP a standalone of 39%, and I take into account the trajectory of the last 11 elections that have happened in states and union territories post-2024 Lok Sabha elections, then using a simple unitary method of calculation, that 39% vote share should translate into actually 289 seats. So the arithmetic there is certainly not right. If I have to extrapolate the average of the last MOTN polls and juxtapose that against 39%, BJP should be getting 289, not 261. Point number one, pure arithmetic based on MOTN data. The second point I want to make is this. You look at Uttar Pradesh, where our closest competitor in 2022 was Samajwadi Party. The vote share difference was barely 9 to 10%. But the BJP scored 255, and Akhilesh Yadav's party was limited to 111 despite a 10% surge in vote share. Again, bringing us back to the same point that Samajwadi Party was not able to translate a rise in vote share into winnable seats. Then let's talk about Lok Sabha 2024 very quickly. Out of the 64 crore odd votes that were cast, 23.59 crore votes were cast in favor of the BJP. Now, if we have to maintain in absolute terms 23.59 crore voters who will continue to vote for BJP, even if you use that method of calculation, BJP should be getting at least 293 to 294 seats.
8: Ma'am, as I said, ma'am, you're giving the arithmetic point. There is arithmetic in election, there's chemistry. When you look at the arithmetic point, you can make an argument which... No, ma'am, there is limited time. You made your point. I gave you uninterrupted time. You claim that arithmetically, the BJP, you believe...
9: मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आती है मध्य प्रदेश के इतिहास से पहली बार दलित समाज का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनता है राजस्थान में दलित समाज का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनता है बाबा साहेब अंबेडकर के बाद देश के इतिहास में पहली बार कोई दलित समाज का व्यक्ति केंद्र में कानून मंत्री बनता है तो अर्जुन राम मेघवाल बनते हैं ये कैसी बात करते हैं मान सम्मान देंगे नहीं कमरे के बाहर रखेंगे आप दलितों से चप्पल उठवाने का काम करेंगे शासन में प्रशासन में संस्थानों में किसी प्रकार की कोई भागीदारी देंगे नहीं आप वर्तमान में भी यही स्थिति हो रही है मैं बिहार का रहने वाला हूं बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा था बिहार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राजेश कुमार राम जी पटना हवाई अड्डे के बाहर जो वीडियो आया था दिल दहलाने वाला हिंसा का सामना करना पड़ा था उनको ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है और मैं पुनः बोलता हूं चाहे वो पंजाब के चंडी हो हरियाणा की शैलजा हो बिहार के राजेश राम हो कर्नाटक के परमेश्वर हो तेलंगाना के विरमार्क हो केंद्र में खड़गे हो यह सब उदाहरण दर्शाता है कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने मात्र दलित समाज को राजनीतिक रोटी सेकने का माध्यम बनाया है बाबा साहेब अंबेडकर का इतिहास हमको मालूम है बाबा साहेब अंबेडकर चुनाव न जीते ये किसने सुनिश्चित किया था बाबू जगजीवन राम से लेकर के बाबा साहेब अंबेडकर कांशीराम सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष उनको लेकर के उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ था पूछना चाहते हैं और वो हमसे पूछते हैं हमारी प्रतिबद्धता हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन काल में जन्म से लेकर के उनके देहांत तक जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है दिल्ली के केंद्र में यहां पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर हम जाते हैं तो हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ के हमें बड़ा ही गर्व होता है वो स्थान किसने बनाया हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कांग्रेस ने स्वयं के दो दो प्रधानमंत्रियों को पद पे रहते हुए भारत रत्न दिया भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला जब भाजपा समर्थित सरकार केंद्र में आती है सदन में तेलचित्र नहीं है बाबा साहेब अंबेडकर का इतने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं आने दिया लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही वहां पर तेल चित्र की भी सुविधा होती है साथियों मैं खुली चेतावनी देता हूं राहुल गांधी जी को सामाजिक न्याय सामाजिक सशक्तिकरण दलित समाज का मान सम्मान स्वाभिमान और प्रतिनिधित्व पे स्कॉलरशिप हो प्रतिनिधित्व हो संस्थान हो हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है आप दलित विरोधी कानून देखिए जो एससी कम्युनिटी को मिलने वाली सहायता राशि थी 85,000 से बढ़कर के 8,25,000 हो जाती है सब प्लान में भी केंद्र सरकार 100% तक का योगदान देती है तो किस प्रकार से समाज के सभी वर्गों का मान सम्मान बढ़े संतुलन रहे लेकिन राहुल गांधी जी और उनकी मानसिकता लगातार देखिए एक स्क्रिप्ट है और वो स्क्रिप्ट के तहत ऐसा करते हैं उनको दलित समाज के लोग दिखते नहीं है अभी कुछ दिनों पहले वो पेट्रियार्की पे आ गए थे तो पेट्रियार्की में भी उनको लोग दिखे नहीं वो दलित समाज की बेटी नहीं दिखी उनको आदिवासी की बेटी नहीं दिखती है उनको तो कांग्रेस पार्टी का चेहरा नव सामंतवाद घोर जातिवाद और दलित विरोधी का उनके इतिहास है यह बात हमें जानकारी में रखने की आवश्यकता है मैं आग्रह करूंगा आगे के प्रोसीडिंग के लिए आदरणीय सुधांशु जी से
10: धन्यवाद गुरु प्रकाश जी और अगले क्रम में मैं राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से आग्रह करता हूं कृपया संबोधित करें
11: मित्रों जैसा भी भाई गुरु प्रकाश जी ने बताया आज स्थिति यह है कि अनेक प्रकार के स्वांग और प्रपंच रचकर भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी के जो स्पीच रचनाकार हैं वो अपनी सृजनात्मकता खोते चले जा रहे हैं 2014 में बाबा ब्रिगेड नाम से एक युवा का चेहरा, तो 2019 में भारत के इतिहास में पहली बार कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के अपना गोत्र बताने वाले, और वहां से 2024 में पक्की दाढ़ी बढ़ाकर दिमागी नक्सल के रूप में एक कॉमरेड के रूप में सामने आने वाले, ये नाना प्रकार के स्वरूप भी उस सच को नहीं छुपा सकते जिसका अभी उल्लेख यहां पर किया गया है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है इन दो वीडियोस से कि इसमें जाति का कोई एंगल नहीं था, परंतु मैंने कहा ना वो सृजनात्मकता खो चुके हैं, तो हर बार वो अपनी घिसी पिटी लाइन के ऊपर ही भारत में टकराव उत्पन्न करने के नए नए तरीके खोजने में व्यस्त रहते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि आपको यदि वास्तविकता में दलित समाज के प्रति इतनी पीड़ा है, तो 18 जुलाई 2019 को भिवाड़ी में हरीश जाटव की के ऊपर कातिराना हमला हुआ और 15 अगस्त को आत्महत्या कर ली थी, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। 15 सितंबर 2021 को अलवर में योगेश जाटव पर भीड़ ने हमला किया और 18 सितंबर को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। 1 जुलाई 2021 को झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की सड़क पर पिटाई हुई और 6 जुलाई को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। क्यों? आपकी सरकार थी। मगर वो भीड़ जिसने हमला किया था वो एक पक्का वाला वोट बैंक था, तो एक तराजू पे तौला जाता है कि दलित की जान की कीमत और वो पक्के वाले हमारे वोट बैंक की कीमत, और जब वो पक्का वोट बैंक दिखता है तो दलित का मान सम्मान और जान तीनों बहुत हल्का लगने लगता है। मैं राहुल गांधी से भी पूछना चाहता हूं, 24 मार्च 2024 को हैदराबाद में मझेला मलक्की डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में जो कुछ हुआ था, फिर मैं बता रहा हूं इन सारे उदाहरणों में भीड़ वही है। फिर 23 फरवरी 2023 को भरतपुर राजस्थान, बहुत लंबा है इसलिए मैं सिर्फ डेट्स कोट कर दे रहा हूं। मार्च 20 2021 को सराय काले खां दिल्ली में, 21 मई 2021 को पूर्णिया बिहार में, 12 अगस्त 2020 को बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है कर्नाटक में, कांग्रेस के एमएलए जो अनुसूचित जात से आते थे अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके घर पे पीएफआई वालों ने अटैक किया। अरे कार्रवाई करना तो छोड़िए, इन्होंने अपनी पार्टी के नेता का साथ नहीं दिया, उन्हें कोर्ट में भी लड़ाई अलग अपनी लड़नी पड़ी और कुछ साल के बाद उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर पार्टी छोड़ दी, यह है इनकी हकीकत। यहां पर मैं एक बार पुनः यह भी याद दिलाना चाहता हूं, यही वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने धारा 370 को बना के रखा था और कश्मीर में यह नियम था कि वाल्मीकि समाज का बेटा बेटी भी यदि पीएचडी भी कर लेगा तो उसका डोमिसाइल यह कहता है कि वो सिर्फ सफाई कर्मचारी बनेगा। यानी आज ये बात करते हैं तथा कथित पुरानी बात पे, भारत के इतिहास में संविधान से प्रोटेक्ट करके जन्म आधारित व्यवसाय की व्यवस्था को सुनिश्चित करना कि सफाई कर्मचारी का बेटा या बेटी सफाई कर्मचारी ही बनेगा चाहे वो पीएचडी क्यों ना कर ले, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में याद करिए हरियाणा में मिर्चीपुर कांड, किसी को याद है कि नहीं? नहीं, वो सब कैसे ध्यान आ सकता है? इसलिए ये जो एक पक्षीय एकांगी सोच है, मुझे लगता है यह वह सत्य और तथ्य है जो पूरी तरीके से स्पष्ट कर देते हैं कि किसके मन में क्या भाव है। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को भी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी, स्टेट गेस्ट हाउस कांड 1995, आम दलित समाज के लोगों की हत्या पर आपके दिल में संवेदना नहीं उत्पन्न होती, उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री जो बनी थी उनकी हत्या की साजिश किसने की थी? यह उनका दिया गया बयान है, हम नहीं बोल रहे हैं, मायावती जी का दिया गया बयान है। उन्होंने नाम लिया था, नाम उस एक पार्टी, उन्होंने कहा था समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, कोट अनकोट दिस वाज हर स्टेटमेंट, और ये प्रोसीडिंग में भी है। और उसके बाद क्या हुआ? केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। कोई बचाने आया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता गए बचाने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, दलितों के मान सम्मान स्वाभिमान और जान तीनों के प्रति कांग्रेस की एक ही पहचान है कि पहले वोट बैंक के तराजू पे तौलो, फिर जो लगे कि जो वाला वोट बैंक भारी है उसी के अनुसार कार्य करो। और इसके ठीक विपरीत मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सोच एकदम अलग है। हम समाज के सभी जातियों में सामंजस्य के साथ समाधान पैदा करना चाहते हैं, वो वैमनस्य के साथ घमासान पैदा करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम वो पार्टी और उस संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने 9 नवंबर 1989 को श्री राम मंदिर शिला पूजन में ईंट स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी से रखवाई थी। वो चार ईंटें जो शास्त्रोक्त ढंग से रखी जाती हैं, नंदा भद्रा जया पूर्णा उसके साथ पहली बार, और तब तक तो कोई ये इशू भी नहीं होता था, हमारे लिए कास्ट कोई इशू नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाल्मीकि समाज के लोगों का वाराणसी में पैर धोया था, सबने देखा, और इन्होंने कहा था वाल्मीकि समाज का बेटा बेटी सिर्फ सफाई कर्मचारी बनेगा, वो एमए कर ले, एमएससी कर ले, एमकॉम कर ले, पीएचडी कर ले, बीटेक कर ले, एमबीबीएस कर ले, कुछ भी कर ले। तो मुझे लगता है कि अब ये बात बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। वास्तविकता में जैसा अभी गुरु प्रकाश जी ने कहा, कभी पैट्रियार्की को उठाना है, यानी कभी जेंडर का मुद्दा उठाना है, कभी क्षेत्र का मुद्दा उठाना है, कभी प्रांत का मुद्दा उठाना है, कभी भाषा का मुद्दा उठाना है, कभी जात का मुद्दा उठाना है, कभी अगड़े पिछड़े का मुद्दा उठाना है, कभी सामान्य और दलित का मुद्दा उठाना है। हकीकत में एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं को आपस में लड़ाना है और पीछे से मैकाले, मार्क्स और मौलाना के एजेंडा को आगे बढ़ाना है। मैं पुनः ये कह रहा हूं, इनकी एक ही थीम है, हिंदुओं को आपस में लड़ाना है और पीछे से मैकाले, मार्क्स और मौलाना के शिकंजे को और तगड़ा बनाना है। अभी गुरु भाई ने एक बात कही जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के चुनाव का उल्लेख किया, तो मैं सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, 16 जनवरी 1952 को लेटर लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, और ये सिलेक्टेड वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में कोटेड है, और वो लेटर लखनऊ से लिखा गया, उसमें हर्ष व्यक्त करते हैं डॉक्टर अंबेडकर की हार पर, और दो बार प्रचार करने गए थे डॉक्टर अंबेडकर, प्रधानमंत्री किसी एक लोकसभा में दो बार प्रचार करने जाए कितना मुश्किल, वो भी उस दौर में जब प्लेन्स, कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कितने कम थे। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के अंदर क्या जिजीविषा रही होगी डॉक्टर अंबेडकर को हराने के। तो क्या लिखते हैं, अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड, और लिख किसको रहे हैं, एडविन माउंटबेटन को, अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड, बहुत प्रसन्न है कि वो हार गए। और आगे जानते हैं क्या शब्द लिख रहे हैं, वो याद रखना चाहिए, उन्होंने कहा था सोशलिस्ट हैव ज्वाइन हैंड विद अंबेडकर, ये उनके वर्ड्स हैं, सो दे लॉस्ट देयर रिप्यूट, यानी समाजवादियों ने उनका सहयोग किया है इसलिए उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। और आगे क्या लिखते हैं, ये नेहरू जी के वर्ड है, बट अंबेडकर हैज ज्वाइन हैंड विद हिंदू फंडामेंटलिस्ट, मतलब हम नहीं है मगर उनकी नजर में वो किसको कह रहे हैं, यानी बाबा साहब अंबेडकर किसकी तरफ झुक रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। वहां से लेके आज तक, यानी राहुल गांधी की कांग्रेस तक, और इन्होंने अभी उल्लेख किया, एक मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं, 2024 की लोकसभा में, अब तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे, याद करिए संसद भवन के बाहर का वीडियो, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी खड़े हैं पीछे, और एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े हैं, और राहुल गांधी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, दोनों सिर पीछे खड़े हुए हैं, क्या सम्मान है, आयु का, पद का, प्रतिष्ठा का, किस चीज का। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों के लिए भी मैं एक फूड फॉर थॉट देता हूं, अब आप लोग एक क्विज कॉन्टेस्ट करिए कि अगले हफ्ते में राहुल गांधी आपस में हिंदू समाज को लड़ाने के लिए कौन सा मुद्दा उठाने वाले हैं, जात का, भाषा का, पैट्रियार्की का, कौन सा मुद्दा उठाएंगे। और इस पे मुझे लगता है कि सबकी राजनीतिक कुशलता की परीक्षा भी होगी, क्योंकि देखिए वो हैं तो प्रिडिक्टेड लाइन के ऊपर चल रहे हैं, तो मुझे लगता है जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया जाता था ना, तो ये चार विकल्प दीजिए, वो जो कौन बनेगा करोड़पति वाले में, वैसे तो वो करोड़पति छोड़िए अपनी पार्टी की दुर्गति कराते जा रहे हैं इसको चलते हुए, वो एक अलग विषय है। और इसलिए मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो वीडियो यहां दिखाया गया उसने साफ कर दिया कि मुद्दा कोई जाति का नहीं था। सच क्या है वो उस वीडियो में दिख गया। तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कहूंगा कि आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। और कांग्रेस को जो हर चीज में राहुल गांधी जी को बुराई देखने का दृष्टि दोष आ गया है कि इकोनॉमी भी डेड नजर आती है और भारत में विकास नजर नहीं आता है, पैट्रियार्की नजर आती है, जातिगत संघर्ष नजर आता है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी के लिए कबीरदास जी का वो दोहा उन्हें एक बार स्मरण करना चाहिए, और चूंकि कबीर साहित्य तो उन्होंने पढ़ा नहीं होगा तो उनके मैं साथियों से कहूंगा इंग्लिश ट्रांसलेशन करके जरा उनको रोमन स्क्रिप्ट में लिख के दे दें कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोए, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोए। धन्यवाद।
10: आपके इस विषय से संबंधित कुछ प्रश्न तो कृपया बताएं।
12: Upping the ante, rejecting the discrimination charge that has been leveled by Rahul Gandhi. The Shuddhikaran Rao that is now escalating with the BJP hitting back at Rahul Gandhi.
9: अगर इतना लंबा समय उन्होंने लिया है, ये सिद्ध रूप से इस बात को सिद्ध करता है कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई वास्तविकता ही नहीं है। अभी हमने वीडियो चला करके आपको दिखाया कि दलित समाज के हितैषी बनते हैं, दलित समाज के दो युवकों के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है FIR जाएगा, वो असंवैधानिक होगा, कोई कानून का आधार नहीं है, कोई तर्क का आधार नहीं, कोई तथ्यों का आधार नहीं है। हम पुनः बोलना चाहते हैं, राहुल गांधी जी इसमें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनको कोई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। अब देखिएगा बाकी के मुद्दों की तरह, शेष मुद्दों की तरह इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, न कोई FIR होना है न कोई सुनवाई होनी।
11: देखिए FIR पे एक पॉइंट और भी कहा जा सकता है, हकीकत में तो वो लोग।
12: एंड यू जस्ट हर्ड हाउ द बीजेपी इज अपिंग द एंटी अगेंस्ट राहुल गांधी, रिजेक्टिंग द डिस्क्रिमिनेशन चार्ज दैट हैज बीन लेवल्ड बाय हिम, सेइंग दैट दिस इज द कांग्रेसेस बिड टू डिवाइड हिंदूज। राहुल गांधी हु हैड लेवल्ड द शुद्धिकरण चार्ज अगेंस्ट द बीजेपी एंड व्हाट हैड हैपेंड इन हल्द्वानी, लिसन इन टू व्हाट ही हैड सेड अर्लियर।
13: हमारे CLP राजस्थान के मंदिर जाते हैं, बीजेपी के नेता शुद्धिकरण करते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने, और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और RSS के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और RSS के लोग ये करते हैं, और ये क्राइम है। जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर FIR

0: नहीं हो रहा है। मानसरोवर में जो घटना घटी, नेपाल में जो त्रासदी हुई, उसके बाद से ही दोनों संपर्क में नहीं है। फिलहाल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द उनका संपर्क किया जा सके, उनसे संपर्क हो सके और उनकी कुशलता की खबर लोगों तक पहुंचा सके, उनके परिवार वालों तक पहुंचा सके।
1: An Infosys Public Services CEO, Lax Gopi Sethi, who was in Nepal in a personal capacity, is also currently not reachable. After denying help earlier, Nepal has now sought help from other nations and urged countries to send rescue teams. Former Nepal Foreign Minister has also lauded Prime Minister for assistance.
2: हम भारत सरकार के प्रति, विशेष करके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति भी आभारी हैं कि उन्होंने बहुत ही फास्ट जो है रिएक्ट किया है। ये हमारे साथ जो है संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए ही नहीं, हम लोगों के साथ जो है सहयोग के लिए भी, हाथ बढ़ाने के लिए भी भारत सरकार ने बहुत ही त्वरित किस्म से, बहुत ही फास्ट किस्म से एक्शन लिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वैसे
1: Amid one of the biggest operations in the Himalayan foothills, families wait anxiously for news of their loved ones as the death toll and the number of people unaccounted for continues to rise. Vishweta Singh, Bureau Report, India Today.
3: And well, the flood fury in Nepal has claimed more than 670 lives. Thousands of people are still missing as rescue and relief operations continue. India Today is the only channel on the ground in Nepal tracking their response to the catastrophic flash floods for the last 3 days. We're getting you a look at some of these reports.
4: नेपाल पर फिर एक और खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर बीती रात से जब भोटेकशी रिवर जो है उसका जलस्तर बढ़ने लगा, उसी के साथ साथ त्रिशूली नदी का भी जलस्तर में बढ़ोतरी हुई, प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले तमाम लोगों को हिदायत दी कि वो सुरक्षित चले जाए। बीते दिन भी इसी तरह पानी के स्तर बढ़ने की जैसे ही जानकारी मिली, लोगों को वहां से हटाया गया और खतरा इस बात का है कि आगे डाउनस्ट्रीम तक न सिर्फ जलस्तर बढ़ेगा बल्कि उसके साथ अगर मलबा भी आता है नीचे तो रिस्क फैक्टर और बढ़ेगा। We are now in Dunge market of Nuwakot. As I see walking to these stretches, these were literally, you know, under the debris, but the rescue operation team who were trying to restore the connectivity were somehow able to open only 300 to 400 meters. Now, as I am walking on this road, look at this height of the debris. This was the city, totally colorful, absolutely happening vibe. This was also the season of pilgrimage, Mansarovar Yatri, the pilgrimage. That was through this connectivity. But all I see only the devastation, what this mayhem, the flood, has left the footprints of. That's a Karyalaya Karyanvan Ikai. That's what agriculture center. Look at this. The whole building is now turned into literally rubble and debris. On the other side, many of these residential area, they have literally been flattened. And many of the people, what I'm told by the locals, near more than 10,000, that was the population of this city. Barely few hundred people who have been accounted for. However, the huge number of the people are missing. And unless those complaints are registered, those people come out, only the real, tragically real figure of the missing persons will be available. The fury of the flood was so huge that it literally swept away even the heavy constructions. Imagine the people, those who were in the market, where would have they gone? जिन इलाकों में ये तबाही आई है वहाँ कई सारे स्वयंसेवी संगठन जो हैं उन्होंने रिलीफ कैंप शुरू कर दिए हैं। मैं इस समय विदुर के एक रिलीफ कैंप में हूँ और यहाँ देखिए लोगों के लिए खाना बनाने की कोशिश हो रही है कि जितने लोग हैं, खासकर जिनको अपना गांव खाली करना पड़ा, दुकानें बंद हैं, तो उनके लिए खाना मिल सके। और आसपास जो लोग वहाँ इलाकों से, प्रभावित इलाकों से बचा के लाए गए हैं, उन सबको यहाँ पर खाना वाना दिया जा रहा है। और ये आपदा की घड़ी में पूरा नेपाल एकजुट होकर एक दूसरे की मदद के लिए आगे आया है। आगे देखिए रिलीफ कैंपों में बहुत सारा सामान जो जरूरत का वो भी आ रहा है और जो स्वयंसेवी संगठन है वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ताकि कोई भी भूखा ना सोए। मौसम खराब हो जाता है तो अलग अलग जगहों पर रहने की व्यवस्था है। यहाँ देखिए हमने देखा चावल बना हुआ, यहाँ सब्जी रोटी सब, जो लोग जहाँ से भी बना। आप लोग कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं? काठमांडू से ये लोग हैं जो आए हैं खाना लेकर के, खाना पीना लेकर के, पानी लेकर के, दवाइयां लेकर के। तो इतने सौ लोग हैं जो यहाँ काम करते थे जिनको बचा के लाया गया है ताकि इन सबको खाना पीना मिल सके। इस आपदा की घड़ी में पूरा नेपाल, 4 दिन से बता रहे हैं कि 4 दिन से ये लोग यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे की मदद के लिए लोग सामने आए हैं।

0: मोहम्मद शोएब
1: जी सर, हमारा बॉटल अंदर करो।
2: हमको नहीं जाना दुबई, यहीं रहना है, रोज रोज जलील होना है।
3: एक बार हम सिपाही बन गए साला, किसी के बाप में हिम्मत नहीं होगी हमको घर आने की।
4: सिर्फ हम चाहे जितने विकेट उखाड़, एक सरकारी फार्म की कैटेगरी वाले डिब्बे भर की औकात है हमारी, और बस वही तक सीमित है, वही हमारी पहचान।
3: तो पहचान वो नहीं है बे जो हमें पकड़ाई गई, पहचान तो वो है जो हम खुद बनाते हैं।
5: Meanwhile, he has Jugadu, an action comedy in the pipeline.
6: Naam kya hai uska?
7: Abhiraj Singh.
5: He will also reprise his lead role in the upcoming second season of Netflix, The Royals.
8: Kya tumhari sab kuch mazak hai? Anything that you value?
9: Hum jante hain tumhare aur us ladki ke bare mein.
5: Entertainment Bureau, India Today.
10: Wo kya hota hai?
11: Oh, Paddy.

इस सपा का मतलब ही है लूट खसोट, इस समाजवादी पार्टी का मतलब ही है कि डकैतों का एक गिरोह। ये लोग नहीं है, 17 के पहले मां क्या क्या कहावत थी, देख सपाई बिटिया घबराई, यानी हर बेटी चिंतित रहती थी, हर अभिभावक चिंतित रहता था क्या होगा। किसी भी मां बाप के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है बेटी की सुरक्षा, हर मां बाप के लिए चिंता होती है, हर भाई की चिंता होती है। लेकिन इन सपाइयों ने बेटी के साथ जो व्यवहार किया था, कल मैं देख रहा था, जब हम फ्री में बस यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे थे 26 को, तो समाजवादी पार्टी के बबुआ की नींद भी टूटी और वो भी एक प्रेस वार्ता जल्दी जल्दी में बुलाने लग गए। उपद्रव किसी उत्सव के पहले उपद्रव नहीं होता है, अब दंगे फसाद नहीं होते हैं, दंगा फसाद अब यूपी में नहीं हो सकता है। मैं बहुचक हूं, आपने देखा होगा परसों, कल और आज भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में हम लोगों ने 3 दिन की विशेष सुविधा दी है, हर बेटी को, हर बहन को, हर माता को बस में एक सहयात्री के साथ फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई है। सबको हमने कहा, आप सोचो

0: जिन इलाकों में ये तबाही आई है वहाँ कई सारे स्वयंसेवी संगठन जो हैं उन्होंने रिलीफ कैंप शुरू कर दिए हैं। मैं इस समय विदुर के एक रिलीफ कैंप में हूँ और यहाँ देखिए लोगों के लिए खाना बनाने की कोशिश हो रही है कि जितने लोग हैं खासकर जिनको अपना गांव खाली करना पड़ा, दुकानें बंद है, तो उनके लिए खाना मिल सके। और आसपास जो लोग वहाँ उन इलाकों से प्रभावित इलाकों से बचा के लाए गए हैं उन सबको यहाँ पर खाना वाना दिया जा रहा है। और ये आपदा की घड़ी में पूरा नेपाल एकजुट होकर एक दूसरे की मदद के लिए आगे आया है। आगे देखिए रिलीफ कैंपों में बहुत सारा सामान जो जरूरत का वो भी आ रहा है और जो स्वयंसेवी संगठन है वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ताकि कोई भी भूखा ना सोए। मौसम खराब हो जाता है तो अलग अलग जगहों पर रहने की व्यवस्था है। यहाँ देखिए हमने देखा चावल बना हुआ है, यहाँ सब्जी रोटी सब जो लोग जहाँ से भी बना। आप लोग कहाँ यहीं के रहने वाले हैं? काठमांडू से ये लोग हैं जो आए हैं खाना लेकर के, खाना पीना लेकर के, पानी लेकर के, दवाइयां लेकर के। तो इतने सौ लोग हैं जो यहाँ काम करते थे जिनको बचा के लाया गया है ताकि इन सबको खाना पीना मिल सके। इस आपदा की घड़ी में पूरा नेपाल चार दिन से बता रहे हैं कि चार दिन से ये लोग यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे की मदद के लिए लोग सामने आए हैं। India today is at ground zero and I am here at the closest village which is connected is Bhadravati. Right behind me is Bhadravati, which is the closest town to Ruswa district. This is the bordering point of Ruswa district and 30 minutes drive from here will take you to the Ruswa. Right behind me is flowing the river Trishuli, also known as Bhatkoshi, that caused this massive devastation at this landscape. This highway that connects to Ruswa has been totally washed away. Along with that, fishery business, hydro project, water supply essential, all the critical infrastructure has been totally taken down by this river. And even after 4 days, that doesn't look like any time soon these roads can be reopened or restored. Everything is just under the debris and the mud. All the villages, population, market, everything has been washed away. These are the exclusive report from Bhadravati, the last town just the bordering of Ruswa district where we are India today, constantly reporting from ground zero. And look at this, the width of this river, the Trishuli, also known as Bhatkoshi river, this is very unlike how it used to flow. But then what we have seen, the calamity that triggered from Tibet is eventually turning this whole area into a devastation.
1: Beyond the immediate human tragedy, however, this catastrophe raises a much larger question. Is Nepal paying the price for China's unprecedented infrastructure push in one of the world's most fragile regions? China has built dozens of underground hydropower projects near Nepal's Rasu-Wagari Valley adjoining Tibet. Despite the fragile ecology and topography of the region, and experts say this is likely to have contributed to the disaster. Here's that report.
2: Was Nepal's nightmare triggered by increasing ignorance of the region's fragile ecosystem? What happens when infrastructure of unprecedented scale is constructed in one of the most geologically fragile regions on Earth? China has built and is building major hydropower projects in the Himalayan region close to Nepal's northern frontier. Near Nepal's Rasu-Wagari Valley, adjoining Tibet, several Chinese projects stand at different stages of development. Along the Yarlung Tsangpo River, or the Tibet leg of the Brahmaputra, the Zhangmu Dam is already operational, while Xiangjiaba, Jiksu, Jizuka, Dagu and Parlung are under construction. The most vital project in the region is the Mega Medog Dam near the Indian border, set to become the world's largest dam in the middle of an eco-sensitive border area. Amid steep mountains and active seismic zones, Beijing has added a network of tunnels, dams and underground structures. Defense experts say large-scale construction, altered river flows and sediment movement could have had consequences downstream and been a contributory factor in the disaster.
3: चीन के पास इतने सारे सैटेलाइट है, उपग्रह है, फिर भी क्या उनको ये पता नहीं था कि ऐसे कुछ होने वाला है या ऐसे कुछ हुआ है? और अगर पता होता तो क्या, क्यों उन्होंने ये बात नेपाल को नहीं बताई? तो तकरीबन 4 घंटे बाद

हमारे सीएलपी राजस्थान के मंदिर जाते हैं, बीजेपी के नेता शुद्धिकरण करते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने, और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं। सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं, और ये क्राइम है। जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससी एससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए।

हमारे सीएलपी राजस्थान के मंदिर जाते हैं, बीजेपी के नेता शुद्धिकरण करते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने, और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं। सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं, और ये क्राइम है। जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससी एससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए।

इस सपा का मतलब ही है लूट खसोट, इस समाजवादी पार्टी का मतलब ही है कि डकैतों का एक गिरोह। ये लोग नहीं है, 17 के पहले मां क्या क्या कहावत थी, देख सपाई बिटिया घबराई, यानी हर बेटी चिंतित रहती थी, हर अभिभावक चिंतित रहता था क्या होगा। किसी भी मां बाप के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है बेटी की सुरक्षा, हर मां बाप के लिए चिंता होती है, हर भाई की चिंता होती है। लेकिन इन सपाइयों ने बेटी के साथ जो व्यवहार किया था, कल मैं देख रहा था जब हम फ्री में बस यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे थे 26 को, तो समाजवादी पार्टी के बबुआ की नींद भी टूटी और वो भी एक प्रेस वार्ता जल्दी जल्दी में बुलाने लग गए। उपद्रव किसी उत्सव के पहले उपद्रव नहीं होता है, अब दंगे फसाद नहीं होते हैं, दंगा फसाद अब यूपी में नहीं हो सकता है। मैं बहुचक हूं, आपने देखा होगा परसों कल और आज भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में हम लोगों ने 3 दिन की विशेष सुविधा दी है, हर बेटी को, हर बहन को, हर माता को बस में एक सहयात्री के साथ फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई है। सबको हमने कहा, आप सोचो

हमारे सीएलपी राजस्थान के मंदिर जाते हैं, बीजेपी के नेता शुद्धिकरण करते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने, और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर माझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं, और ये क्राइम है। जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससी एससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए।

इस सपा का मतलब ही है लूट खसोट, इस समाजवादी पार्टी का मतलब ही है कि डकैतों का एक गिरोह। ये लोग नहीं है, 17 के पहले मां क्या क्या कहावत थी, देख सपाई बिटिया घबराई, यानी हर बेटी चिंतित रहती थी, हर अभिभावक चिंतित रहता था क्या होगा। किसी भी मां बाप के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है बेटी की सुरक्षा, हर मां बाप के लिए चिंता होती है, हर भाई की चिंता होती है। लेकिन इन सपाइयों ने बेटी के साथ जो व्यवहार किया था, कल मैं देख रहा था, जब हम फ्री में बस यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे थे 26 को, तो समाजवादी पार्टी के बबुआ की नींद भी टूटी और वो भी एक प्रेस वार्ता जल्दी जल्दी में बुलाने लग गए। उपद्रव किसी उत्सव के पहले उपद्रव नहीं होता है, अब दंगे फसाद नहीं होते हैं, दंगा फसाद अब यूपी में नहीं हो सकता है। मैं बहुचक हूं, आपने देखा होगा परसों, कल और आज भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में हम लोगों ने 3 दिन की विशेष सुविधा दी है, हर बेटी को, हर बहन को, हर माता को बस में एक सहयात्री के साथ फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई है। सबको हमने कहा, आप सोचो

हमारे सीएलपी राजस्थान के मंदिर जाते हैं, बीजेपी के नेता शुद्धिकरण करते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं। और ये क्राइम है। जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससी एससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए।